सगरी सृष्ट दखाय अचंभवाद जुगाद स्वरूप सुजंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुझ तव सरनी परेतन के दुष्ट दुख तहावे मारे।

पाई संबर सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधाराय त्री त्रित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पाँच चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त।

गुर सिखो गुर सिख है, गुर सिखो गुर सिख है, पीर पीरो कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई। दर्शन दृष्ट ध्यान तार गुर मूर।

जय प्रसाद तेरे सकल क्षेत्र ठाकै मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताकै। जय प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाई दुलाभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद भूखन पैरी जय मन तिसमृत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असभस्त सवारी मन तै प्रभु को कबू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मेलक धना राग प्रो प्रो अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठ सत से आई तिसे त्याय जो एक लखे नानक तेरी रखे। जय प्रसाद करे पन बोधान मन आड़ पैर का तिसका ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी सगल करीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदास्ती, ब्रह्म ज्ञानी की दस अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पार पार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लै तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सग जागत, ब्रह्म ज्ञानी आवत त्यागत।

ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी को होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जैसे करे प्रवे आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दत्त बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश।

संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तैसे कोई जैसा भाव है तैसा कोई, पया कहत न मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, साहब काट दिस क्यों करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास करास, सब कुछ बढ़ते तिसका किया जैसा।

उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करे भट भागै, नाम जात पावै विश्राम, नान तिन पर तुम कर मान, जो कुछ करे सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुहाए होए सोए, करने हर पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा तस्ताना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए।

हरण पणजा का नेत्र फोर तसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सा जाके सर थोक सुनिए करता कह राज मैं राज योग मैं जोगी ताप मैं तबे सरगस में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तस पुरख का किने अंत ना पाया जाकी लीला की मैं तना है सगल देव हारे अभगाए।

अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजवाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंभर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापण हैं, जप जापण हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवास हैं, जासके जास हैं, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज

रूपे न रेखे अकर्मंग भरमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंग सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गणीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती।

महामूढ कछपेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपुनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उतभुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सिट दिखाए अचम भव आजुगा स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संघरो दुठ जिते उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय हैं ताके काल निकट नह हैं। रक्षा होए ताहे सब काला दोस्ते अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार।

दास वस्तु ले पाछा पावे, एक वस्त कारण में खोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मुड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकुर सो नाही चारा ताको कीजा सद नमस्कार, जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सु ताहू मन उठा, जिसने अपना हुक्म।

आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त असवारी मंत्र इस प्रभ को कबहू ना विसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख परोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह ते आई। तिसह ते आए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखा है। जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ शास्त्र तारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन।

ब्रह्मांडम। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार।

सो जन गत पाए। रूप सत जा का सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे सुमाणी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत, सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली।